0: जल रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरबिन ज्ञान हो। ओ गुरबिन ज्ञान हो।
1: बापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उतर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया।
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया। मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लप रहे हैं। थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी। पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी के दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी।
4: कागो हंस करे।
2: कागो हंस करे। कागो हंस कर। ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ। उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है। उथे बेड़ी पैंदी है। बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार। जो सिर साई ना निवे सो सिर कपल उतार। जो सिर साई ना निवे सो सिर की देखाए। उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए। बालन संदे थाए।
5: साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी?
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए भैने मैं कोई कम कमाई वाली तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां?
5: मेरिया लोड़ा? मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरी करता है। तो हो मैं चाहिए वेखी जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चलाना तो राती लंगर चो ढेड़ भर के बाहर थड़े दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर से जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ।

इन मन की इच्छ पुजाई। गुरु साहिब फरमाउंदे हन के हे पाई, जिस परमात्मा ने जिस प्रभु ने हर वेले हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है, सेवका वांग उस दी भक्ति करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलिहारा

अग में गोचरा तेरा अंत न पाया, अग में गोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया कि नहीं तेरा अपना आपू जाने।

तू सुचा समझ के लियांदा है ओ ता झूठ है। किवें परमेश्वर ने 84 लाख जूना पैदा कीती है।

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा ता पवरा उन्हों सुंग जांदा।

पर सोचे मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणु

जिस तरह रम्यो होया जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा इसे तरह ही वो परमेश्वर है जदों देखांगे

या बाल्टी ओदे विच चाकीए तां सानू साडा चेहरा नजर आवेगा। इसे तरह ही सारे विच परमेश्वर जदों देखांगे ओदू नजर आवेगा।

महूर्त देख के कर दे। कर बनाना होवे कर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी

देखद साल देखद मुहूर्त देखद काम इस महीने इस तारीख नू करना है इस वेले करना है ताकि सारिया नू बुला लवा किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता दिन देख के कीता साल देख के कीता पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया कोई तरीक ना देखी ए ना सोचिया इस दिन इस तरीक नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है पर जड़ी मौत है ए मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया पुछी थित ना वार मौत ने ना दिन देखन देता ना तरीक देखन देती ना कोई महीना देखन देता बस इन्ना ही पता लगा चंगा पाला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस घरों ते तुर पिया परिवार नु मिल के बड़ा खुश है पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना है। घर वाले कारू डीकदे पए ने आ जाणगे शाम नूं मेल हो जाएगा पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा आया हुक्म पार ब्रह्म का उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया ना पत्नी दा ख्याल ना बच्चियां दा ना रिश्तेदारां दा ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढा है जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा हुक्म बड़ा डाढा है आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितदा है, तरक्कियां करदा है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं ए भी कहंदा है मैं जिनू चाहवां उहनू मार सकदा, जिनू चाहवां उहनू छड्ड सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है।

पर तुसा हाली बड़े कम करने। फिर प्यार परी एक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वाल देखिया, एक निगाह सारी संगत वाल देखिया, फिर अखा बंद कर लिया। देखण वालिया नू इस तरह जापदा होने अखा खुलन गिया, होने कुछ कहणगे, होने बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समाओ आ गया ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने, पर उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं, क्योंकि रोण का लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोग सी, सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं, परमेश्वर का कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नू परमेश्वर अल्लाह दे चरणा विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने पाई, अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, विराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना, दुनिया नू नाशवान समझना, दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी, जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहब जी कहंदे ने कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी, ज्यों हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सब मीता, झूठा ए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आप सुन के अपने मना विच धारिए, एक दिन मरना है ताकि जीवन सफला करके जाइए।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

देह रा मसीत सोई पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीत पूजा अते निवाज इना नु एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इना विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मना विच ही नफरत रहिंदी सदियां तों।

हिंदू और मुसलमान दो वडियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहे है, पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे, चार वारन चार मजहबां

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचों जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई सब की कहते हैं।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

गरीब निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ए जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

और जिन्हां ने इंसाफ करना, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी,

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसे न दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है हर पासे परमेश्वर है ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, किदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है फिर ते इंसान यो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे नाल

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकन वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म दी रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और ए जिहड़ा उपदेश है इस नू अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलन दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नू मन लवेगा ओहदा जीवन सफल होवेगा।

0: नहीं प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसे भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ बाबा जी असि भी उन्होंने दर्शन करन आया किथे मिलेंगे
0: सचखंड विखे
1: सचखंड
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी सुरगपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागा च उन्होंने दर्शन नहीं निराश ना हो बेटे उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख साहब की सेवा करा रहे ने
1: तुंग पिंड
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
2: तन गुरु रामदास
1: किन्नी सोनी था है तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान नू लैनी नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है अच्छा
2: छेती आना तन गुरु रामदास।

0: मैं ठीक हो गया, मेरा रूप तो पड़ गया, मैं चल फिर सकता। पंजा जी ने एक तेरे से दुख दफा लो जो अज मैं नवे जीवन मिले। रजनी रजनी मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग टूटा गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाने नहीं रजनी जी?
1: मैं कहने मेरे पति जिन्होंने मैं ऐसे छिपके कहीं से किसी नहीं तुसी मेरे पति।
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चंपूर नहीं लैके, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोलगढ़ लैके, तुसी मैं छबीर वाले बाबा तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग की भी ठीक होया?
0: ये सारी करामात चलती है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रेड़ता रेड़ता ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और पानी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पे सन।
1: तुसी तुसी कैनन भर के पानी कैसे ना केरे हाथ में
0: ऐसे ना।
1: अच्छा तो फिर तुसी ऐसे हाथ में पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जल का चमत्कार देखा।
0: आओ मेरे नाल।

0: तूने ही पुकार सुन ली, माता के दरबार विखे सपना साकार कर दिता। तेरी लीला ब्रह्मभारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

0: तू ताने पुत्र ते ताने तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
2: बेटी,
1: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी, माँ,
2: बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा।
1: इस तरह न को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं गलसा तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास, वो सच में सर्वशक्ति मान, वो उस दिन भी लाभ परम पार है।
0: राजा तू ही जा?
2: नहीं संत जी, सिर्फ दूनी चंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ के लायक नहीं रहा, ते हूं मैं वही राज बना ली है जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
1: पिताजी,
2: बेटी, मैं इसलिए कह रहा सा कि तुम घर जाओ।
1: नहीं पिताजी, जिथों मेरे पति ने नवा जीवन मिले सारे लिए वही थान सुलखनी है।
0: रजनी ठीक कहती है राजा दूनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या का फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिलिया है। ऐ धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ऐ छपड़ी अमृत का कुंड है।
3: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन कंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई, अमृत सरोवर के चौहों कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

मन की इच्छ पुजाई। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे पाई, जिस परमात्मा ने जिस प्रभु ने हर वेले हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है, सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां जिसने विघना दे टाकरे हर वेले पूरे तौर ते इज्जत रखी है।

होतना बारंबार जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंसल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुर सेवा ते पद कमाई तब ए मांस दे ही पाई मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई सब ए मानस दे ही पाए इस दे को सुरे देव सदे पज हर किसे पजो गोविंद भूल मत जाओ पजो गोविंद भूल मत जाओ मन सिम का इलाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारे पानी अपना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना भजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरी बार।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बोते

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो।